भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ ना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावै तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावै तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तहवा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहे नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह

क्या खेती क्या लेवा देई, परपंच झूठ गुमाना, कह कबीर ते अंत बगूते, आया काल निदाना बिलावल। शरीर सरोवर पीतरे अच्छे कमल्यानूप, परम ज्योत परमोत परखोतमो, जा कह रेख न रूप। रे मन हर पज

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनि उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जब सब मैं पेख, कुटल गांठ जब खोले देव। बारंबार माया ते अटकै, लै नरजा मन तो लै देव। जह हो जाए तही सुख पावै, माया तासना चोलै देव। कह कबीर मेरा मन मानिया, राम प्रीत की ओ लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतरलीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना, जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दार्द देख सब को हसै, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं पव